0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना बी

0: जीएल की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता रहेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अति डीटीएचडी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। सवेर दे 6:05 होए ने ज्ञान अमृत।

ऐसी ज्ञान अमृत आओ श्रवण करते हैं भक्ति संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

उस परम पिता परमात्मा दे दरबार लगवा रिया हाजरी भगती संगीत दे प्रोग्राम आराधना दे नाल।

सभी उस मालक उस राम दिया रचनावा ती उना रचनावा तू रामदा ही सिमरन रामदा ही नाम बस इहो भक्ति च इहो नाम।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंदमग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

हुणे तुसी सरवण कर रहे सी श्री रामचरितमानस दा लड़ीवार पाठ मानस गान। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 6:50 होए ने। आ हुण तुहानू अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दी जानकारी दे दईए।

0: त्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रियहितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजनायां चतुःशताधिक द्विसहस्रकोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्यायं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम् 1-0 अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीया अन्तिमा च एकदिवसीया स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितम्बरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बजे ने पेश ने जी मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नवी दिल्ली विच पीएम विकसित भारत रोजगार योजना तहत 2400 करोड़ रुपए की राशि वंडी। पंजाब विच ए प्रोग्राम 6 थावां ते करवाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले सालां दे विच भारत दे नौजवान विश्वव्यापी विकास नवीनता अते उद्यमता नूं वधाउण विच सब तो अगे होणगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दा रक्षा उत्पाद दन लगातार वध के 1,78,000 करोड़ रुपए तो वध होया। राष्ट्रीय महिला कमीशन ने काम वाली थां ते महिलावां दे जिंसी शोषण एक्ट 213 तहत व्यापक उपावां नूं तुरंत अते प्रभावशाली ढंग दे नाल लागू करन दी मंग करदिआं सारे राजा ते केंद्र शासित प्रदेशां नूं इक सलाह जारी कीती। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल 21 जून नूं नीट यूजी दी मुड़ परीक्षा तो पहला टैलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ते अस्थाई तौर ते रोक लगाउन दे केंद्र दे फैसले नूं बरकरार रख्या। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सतलुज पट्टी नूं हड़ा तो बचान अते शाहकोट लोहिया खेतर विच आवाजाई नूं सुखाला बढ़ाउन दे लई उसी बन लिंक सड़क दा नींह पत्थर रख्या। पंजाब सरकार ने पंजाब दे जनतक सेहत ढांचे च सुधार अते मजबूती लई सेहत खोज अते काडां बारे केंद्र नाल महत्वपूर्ण समझौता सहीबद्ध किया। महिला अते बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने कहा सूबा सरकार ने बच्चों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण दे लई कीते जा रहे उपरालियां तहत 5 बंगलादेशी बच्चों नूं वतन भेजा। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मौके पाकिस्तान भेजे जाण वाले जत्थे लई 290 श्रद्धालुआं नूं वीजा प्राप्त हुए। बीएसएफ ने अमृतसर सरहद तो एक मुजलम नूं एक AK-47 राइफल अते असले समेत काबू किया है। भारत की अश्मिता चालिया ने चीन विच मकाओ ओपन बैडमिंटन दे महिला सिंगल्स दे सेमीफाइनल्स दे विच अपनी जगह बनाई है। इस अन हुन तक दिया मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है जी प्रोग्राम सोनी सवेर।

सवीर आइए हौली हौली, जिवें माँ दी आवाज़ सुत्ते बच्चे नूं छू लवे। खिड़कियां ते सिर्फ रोशनी ने, अज उम्मीद ने भी दस्तक दित्ते ने। हवा ने क्या है? जो कल रह गया सी वो अज मुड़ लिखिया जा सकेगा, हंडाया जा सकेगा, जीविया जा सकेगा। चाह दी पाफ विच, मिट्टी दी खुशबू विच, ते अपनियां दे विच, अपनियां नूं सत श्री अकाल जी। एक नवा दिन धड़कदा है, आओ थोड़ी खुश हो लिए, मुखा ते मुस्कुराहट लै लिए, ते थोड़ा जा रब दा शुकर कर लिए, ते हाँ अपने सुपनियां नूं भी जगा लिए। क्योंकि हर सवेर सूरज नहीं चढ़दा, कई बार हौसले भी चढ़ते ने, ते जिथे हौसले चढ़ जान उथे दिन नहीं कहानियां जमदियां ने। सत श्री अकाल जी, मैं रुपिंदर स्वागत करती हाँ तुहाड़ा अज दे इस खूबसूरत सफर दे विच, जिसका नाम है सोनी सवेर। ते हाँ शुरुआती गीत साड़ी कुल बिल्कुल रेडी, बिल्कुल तैयार।

बिल्कुल जी, रिफ्यूजी फिल्म था ये गीत। रिफ्यूजी यानि कि शरणार्थी। हर साल 20 जून यानि कि आज दे दिन नू मनाया जांदा है विश्व शरणार्थी दिवस दे वजों, यानि कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। उना लोका दी हिम्मत, संघर्ष ती उम्मीद नू सम्मान देन दा दिन, जिन्हां नू जंग, हिंसा, डर या किसी होर मुश्किल दे कारण अपना घर छड्डना पैंदा है। शरणार्थी वह व्यक्ति हुंदा है, वह इंसान हुंदा है जो अपने देश विच सुरक्षित ना होण करके किसी होर देश दे विच पनाह लैंदे ने। इस दिन का मकसद लोगों नू यानी कि सानू ये समझाना है कि शरणार्थी सिर्फ आंकड़े नहीं हुंदे, वह भी सुपने हुंदे ने, परिवार हुंदे ने, उम्मीदां वाले लोग हुंदे ने। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र वल्लों की गई 2001 तो। 20 जून का अज का दिन विश्व शरणार्थी दिवस वजों मनाया जान लगा। ये पहला अफरीकी शरणार्थी दिवस के नाल जुड़िया होया सी, बाद विच इसनू विश्व पद्धर ते मनाया जान लग पिया। ते जेकर आंकड़िया की जबानी वेखिए, दुनिया भर के 2025 के अंत तक लगभग 11.78 करोड़ लोग जंग के कारण या हिंसा के कारण या जबरदस्ती के कारण अपने घर छड्डन लई मजबूर होए। इन्हां विचों करीब 4.16 करोड़ लोग शरणार्थी हैं जो अपने देश तो बाहर पनाह लै रहे हैं। लगभग 6.87 करोड़ लोग अपने देश के ही अंदर विस्थापित हैं। अज धरती दे हर 70 विचों एक व्यक्ति किसी ना किसी तरह जबरदस्ती घर छड़ चुका है। एक होर महत्वपूर्ण गल ये भी है कि ज़्यादातर शरणार्थी अमीर देशां दे विच नहीं सगो घट अते मध्यम आमदन वाले देशां विच रहिंदे ने। लगभग 68% उत्थे ही रहिंदे ने। आंकड़े दसदे ने किन्ने लोग घरां तो दूर ने, पर उन्हां दियां अखां विच अज वी घर दी वापसी दी उम्मीद जिंदा है, अपणियां नूं मिलण दी उम्मीद भी जिंदा है। ते हाँ, अज दा इह दिन विश्व शरणार्थी दिवस दे वजों जिहड़ा असीं मना रहे हां, हर इंसान नूं सुरक्षित जीवन जीण दा अधिकार है सानू यही कह रहा है। मनुखता सरहदां तो वड्डी हुंदी है। हर व्यक्ति घर ते सन्मान मिलना ते उसका हकदार भी हुंदा है। उम्मीद सब तो वड्डी ताकत है। इस संदेश

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: इंग्लैंड की धरती ते भारत दीआं धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

जी हाँ, आसन, प्राणायाम, ध्यान, अनुशासन ते संतुलन, योग विच शरीर थकदा नहीं, मन ठहर जांदा है, सब मुस्कुराउंदे ने ते जिंदगी अपनी लह लभ लैंदी है। ते हाँ, आओ एक वादा करिए, हर रोज़ कुछ मिनट अपने लिए कढ़ांगे, अपनियां साहां नूं सुणांगे, अपने अंदर दी शांति नू जगावांगे, इसी उम्मीद, इसी मुस्कान ते इसी ऊर्जा दे नाल। बिल्कुल जी, हुण वेला हो गया है कि तुहाडी तों इजाजत लै ली जावे। मुस्कुराउंदे रहो, तंदरुस्त रहो ते हर नवी सवेर नू खुले दिल नाल जियो। सोहणी सवेर दा सफर हुण इस गीत दे नाल ही थम रिहा है। खुशियां खेड़ी तुहाड़ी वेड़े रहन बरकरार, ते तुसी मुस्कुराउंदे रहो ते बहुत ही हल्का महसूस करो, ते हाँ, आसमानी उडारियां लगाउंदे रहो।

0: आपका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से

0: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
5: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
4: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,000।
6: नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।

0: शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: We have been able to achieve that in the first.
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: They are all designed in India now.
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं
5: धन्यवाद। मुखपृष्ठ पर है दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। सवेर दे 9 बज रहे ने, अहुन सुनदे हाँ एक विशेष चर्चा। विषय है ऑपरेशन सिंदूर। भाग लैन वाले ने सेवा मुक्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ते राजेश चंद्र बाली जो मुखी ने खेतरी समाचार विभाग आकाशवाणी जलंधर तों।

0: में फौजी आए थे जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी, और हमारे फौजी आए थे उधर, और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अवार्ड मिला, मैंने सपने भी नहीं सोचा था।
1: जनरल टेनन, सलाम है इस बच्चे की बहादुरी ते जज्बे नूं।
2: बिल्कुल बली साहब, पंजाब दे खास करके और नॉर्थ इंडिया जिन्हें भी अपने सरहदी इलाके ने, उत्थों दा जिहड़ा बच्चा है जदों वो पैदा हुंदा है, बचपन च खेडदा है बॉर्डर दे उपर, फौज उत्थे एक्सरसाइज करन दे लई आउंदी है, फौजियां नूं मिलदे ने, फौजियां दी आओ भगत करदे ने, फौजियां दे नाल बैठदे ने, ते फौजियां दी हर किस्म दी सेवा कीती जांदी है क्योंकि वह साडे देश दे रखवाले ने। मैं खुद, क्योंकि मेरे खुद दे नानके भी खालड़ा खेमकरन सैक्टर दे विच ने, बॉर्डर दे बिल्कुल नज़दीक ने, ते मैं खुद अपने बचपन दे विच जदों छुट्टियां चाहीदे सी उस टाइम दे उपर फौजी एक्सरसाइज लियांदे सी, उन्हां नूं कदी लस्सी लैके जाणा, कदी उन्हां लई रोटियां लैके जाणा, ते इह इक बहुत जिहड़ी कहिंदे आ फ्रॉम विद इन एक फीलिंग है पंजाब दे विच, पंजाबियां दे खून दे विच है, क्योंकि हर परिवार दा कम से कम एक नुमाइंदा फौज दे विच है, ते इह फौज दे नाल जिहड़ा तालमेल रखना, फौज दे कंधे दे नाल कंधा मिला के जिहड़ा कम करना, चाहे वह पीस टाइम है चाहे वह लड़ाई है, जंग दे दौरान भी साडे पंजाबी अपना पिंड छड्ड के पिछे नहीं आउंदे, सिर्फ लेडीज़ बच्चे और जानवर माल डंगर नूं पिछे लै आउंदे ने, लेकिन खुद उत्थे रहिंदे ने, फौजियां दी मदद करदे ने। और ये बच्चे ने, शवन सिंह ने जो दर्शाया, ये एक जज्बा है, ये एक पंजाबी जज्बा है, एक हिंदुस्तानी जज्बा है कि हिंदुस्तान की फौज के नाल खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करांगे, और ये जज्बा बचपन तो है और आखिर दम तक रहिंदा है। सलाम है, सलाम है इस जज्बे नूं,
1: सलाम है इस जज्बे नूं। वाकई असीं देखिया 1965 ते 71 जंगां दे विच वी किस तरह असीं सारे ने रल के, देश ने पूरे रल के जवाब दिता सी पाकिस्तान नूं। जनरल टेनन, इस सफल ऑपरेशन दे विच भारत ने जिथे अपनी फौजी समर्था, फौजी ताकत विखाई सी, उत्थे जो हथियार अते फौजी साजो समान इस्तेमाल किया गया सी, वह भी साढ़े अपने देश विच ही तैयार होया सी। इस मेक इन इंडिया का सानू किन्ना फायदा होया, साडी फौजी समर्था भी वधी है, असीं आत्म निर्भर होए हाँ, इस बारे किस तरह तुसी सोचदे, किस तरह सब चीज़ां साड़ियां अपनियां इस्तेमाल हुई और सानू इहनां किदा किन्ना फायदा होया?
2: मलिक साहब, जो मेक इन इंडिया दे जिहड़े हथियार सी वह बहुत कामयाब हथियार सी, जिवें ब्रह्मोस है रशिया और इंडिया ने जॉइंट वेंचर नाल बनाई, और ब्रह्मो मिजाइल ऐसी सी जिन्हें एक एक टारगेट नूं डिस्ट्रॉय किया, और पाकिस्तान उसनूं ना तो पकड़ पाई, ना उसनूं इंटरसैप्ट कर पाई, ना उसनूं डिस्ट्रॉय कर पाए। इस तो अलावा मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जाम्पल दिंदा, क्योंकि इंडियन आर्मी दे विच बहुत सारे वैपन सिस्टम्स ने, लोगों ने टीवी स्क्रीन उपर देखे किवें पाकिस्तान वालों ड्रोन आ रहे सी, मिजाइल जा रहे सी, ते किवें उन्हां नूं मिड एयर हवा दे विच उन्हां नूं बर्बाद किया जा रहा सी। उन्हां दे एक भी मिजाइल या ड्रोन साडे किसे भी फौजी इंस्टॉलेशन दे उपर आ के सानूं अटैक नहीं कर पाई। उस दे पिछे भी एक जिहड़ा मेक इन इंडिया जां इंडिया दे विच जिहड़ा असीं अपना डेवलपमेंट करदे हैं, R&D करदे हैं, उसका एक बहुत वड्डा हाथ है। एक हिंदुस्तान आर्मी दे विच आकाश तीर करके एक प्रोजेक्ट है। आकाश तीर प्रोजेक्ट जिहड़ा है वह की करता है, हुण साडे कोल पुराने 1950-1960 दे टाइम दियां बेल्टेड एमनीशन वालियां एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने, उस दे बाद दे विच साडे कोल शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिजाइल्स ने, फिर साडे कोल शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लोंग रेंज, सरफेस टू एयर मिजाइल्स ने, उस दे बाद हुण साडे कोल ब्रह्मोस ने, S-400 ने। ना हुण इन्ने सारे वक्रे वक्रे किस्म दे हथियार, एक बेल्टेड एमनीशन वाली गन तो लैके जिन्हों निशाना लैके मारना पैंदा है, टू फायर एंड फॉरगेट S-400, वो इन्हां सब नूं हुण सामने तुहाडे अगर ड्रोन आ रहा है तो उस दे उपर तुसीं S-400 नहीं फायर कर सकते, जे सामने तुहाडे मिजाइल आ रही है तो उस दे उपर तुसीं वह गन नहीं फायर कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी सी कि जिहड़ा आउण वाला दुश्मन का वैपन सिस्टम है उसनूं डिटेक्ट करो की है, और उस दे लई जो बिल्कुल कारगर हथियार है उसनूं डेजिग्नेट करो ताकि वह उसनूं डिस्ट्रॉय करे विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। तो ये पूरे ताने बाने नूं बुनण दे लई डिटेक्शन, डेजिग्नेशन ऑफ द परफेक्ट वैपन सिस्टम एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनमी वैपन, ये तिन्नां नूं जदों कंबाइन करके सॉफ्टवेयर बेस्ड रियल टाइम, इस ते सिर्फ 10-15-20 सैकेंड का फासला हुंदा है कि दुश्मन दा वैपन नूं डिटेक्ट किया जाए, देखा जाए और उसनूं बर्बाद किया जाए। ये सारे नूं असीं एक आकाश तीर सिस्टम दे तहत इंटीग्रेट किया विद इन इंडिया, और उसनूं बड़ी कामयाबी दे नाल ऑपरेशन संदूर दे विच ग्राउंड दे उपर इस्तेमाल किया। तो इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडियन प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री और इंडियन डिफेंस फोर्सिज एंड साइंटिस्ट, आई थिंक इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और मेक इन इंडिया इज़ अ बिग सक्सैस। लड़ाई के दौरान तुसीं किसी के उपर भी निर्भर नहीं रह सकते, तुहानू अपने

0: आप दे ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा इफ यू वांट टू फाइट अ बैटल एंड अ वॉर सक्सेसफुली।
1: दोस्तों प्रधानमंत्री ने भी देश विच बने हथियारों बारे बोलदिया कहा सी,
2: साथियों हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी, दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, ताजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता बिना रुकावट बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की संसद विच भी कहा सी कि ऑपरेशन सिंदूर हाले खत्म नहीं होया है, ये जारी है।
2: उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: जनरल टंडन, भारत की सुरक्षा के संबंध में प्रधानमंत्री के इस बयान को किस तरह देखते हो कि ऑपरेशन हल्ले भी जारी है?
0: भली साहब, असी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, साडा एक जिहड़ी सिविलियन गवर्नमेंट इनचार्ज है, साडी मिलिट्री सिविल गवर्नमेंट के हुक्म के नीचे काम करती है, एज अ डेमोक्रेटिक प्रोसैस। और कोई भी लड़ाई हुण जिवें तुहाडे स्रोतियां नूं याद होएगा, जदों पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर होया, उस तो पहलों कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उस दे बाद दे विच नैशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उस दे बाद प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई विद डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, मिलिट्री हैड्स, CDS, नेवल आर्मी, एयरफोर्स चीफ्स। ये सारा एक प्रोसैस हों कि उसके यू नो प्लसिज एंड माइनस न मेजर करने के लिए, और उस दे बाद दे विच एक डेमोक्रेटिक तरीके गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसीजन लेंदी है कि नाओ द नेशन हैज़ टू गो टू वॉर। जंग देश लड़ते हैं, फौजा सिर्फ बॉर्डर के उपर लड़दियाँ ने, जो डिप्लोमैट है वह इंटरनेशनल अरीना में लड़ता है, जोड़ा इकोनोमिस्ट है वह इकोनोमिक फील्ड में लड़ता है, जोड़ा सो मच सो जो टीचर है, टीचर क्लास के जंग लड़ता है कि अपने बच्चों समझाता है कि यह जी जंग है, यह हक सच इंसाफ की जंग है। तो इस करके जिमें मैं पहलों गल की होल ऑफ नेशन अप्रोच, तो ये जिने भी अपरूवल्स ने या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो डिसीजन है कि नाओ देश ने जंग लड़नी है, जो ये डिसीजन हो गया, हुण वो डिसीजन अज तक भी कायम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और पाकिस्तान कोई छोटी जी भी हुण दोबारा वो हरकत करेगा तो सानू ये पूरा प्रोसीजर दोबारा नहीं जान की लोड़। पाकिस्तान ने कोई गलती की, कोई गड़बड़ की, उसका जवाब उस वक्त दिता जाएगा और भरपूर दिता जाएगा। तो ऑपरेशन संदूर का जारी रहना का मतलब यह है कि किसी वक्त भी इसनों दोबारा रीएक्टिवेट किया जा सकता है।
1: बॉर्डर पर भी जोड़े साढ़े फौजी ऑफिसर्स ने उन्होंने कमांडरस में भी सख्त हिदायत है सरकार वालों की, तुम अपने आप भी कोई भी जरूरत पवे तो ऑर्डर कैरी ऑन कर सकते हो, तुम अटैक कर सकते है। ये
0: बाली साहब ऑपरेशनल ऑर्डरस, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये फौज के बहुत इंटरनल सिस्टम्स ने, मैकेनिजम्स ने, और किस कमांडर ने किस तरह किस मौके के उपर किस थ्रेट के तहत किस सरकमस्टांसिस दे विच या किस हालात दे विच काम करना है, ये बड़ा क्लीयरली पेपर के उपर लिख के साइन करके दिता जाता है। इस करके उस कमांडर नू पूरी खुल हुंदी है कि मैनू इस सिचुएशन दे विच इस तरह रिएक्ट करना है। तो ये इंटरनल सिस्टम ने बहुत स्ट्रोंग सिस्टम ने, तो दे आर इन प्लेस।
1: दोस्तों जिस तरह जनरल टेलन दस रहे हैं कि पूरा देश जदों इकट्ठा होंदा तो उहदे अगे कोई भी टिक नहीं सकता है, और असी सब ने भारत में ये चीज़ देखी है, जिन्नी वारी भी साडे जंग थोपी गई है असी सारे इकट्ठे होकर उहदे खिलाफ लड़े हाँ। सलाम है दोस्तों साडी भारतीय सेनावां, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अते नीम फौजी वल BSF नूं अते साडे देश की सरकार नूं जिसने प्रधानमंत्री की अगवाई विच ऑपरेशन सिंदूर राही ना सिर्फ पाकिस्तान नूं अते उसकी सरप्रस्ती हेठ बैठे दहशतगर्दां नूं करारा जवाब दिता सी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी भारत की दहशतगर्दी खिलाफ इस कार्रवाई नूं सही ठहराया गया सीगा। इस नूं किस तरह देखते हो जनरल टिलों तुसीं कि इंटरनेशनल लैवल ते भी जो असी कार्रवाई की सी, ऑपरेशन सिंदूर किया सी, ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੇ ਸਪੋਰਟ

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हो गया इंतजाम। किस दा? गुड्डी दी फीस दा।
1: दिखा 20,000 दा लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज किन्ना है? लोन सिर्फ नियंत्रित

0: एक मिनट लिए रुको, ते सोचो, ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: वृषभासन, भुजंगासन, धनुरासन, ये तीनों बहुत ही मैजिकल आसन है बैक वास्ते।
1: कल 21 जून नूं पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, क्योंकि पूरा विश्व ये मानता है, ये जानता है कि योग उन्हां दी जिंदगी लई सार्थक है। योग उन्हां दे जीवन विच खुशी ते ऊर्जा लेके आउंदा है। जीवन नूं भरपूर जीवन लई, जीवन नूं तंदुरुस्त रखण लई, मानसिक शांति लई, आओ सारे योग करिए, योग नूं अपना जीवन बनाइए।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है जी प्रोग्राम हैलो फरमाइश। अज दे इस प्रोग्राम नू सुनन वालियां दा स्वागत करदे हां। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन ते अभिवादन। लो जी, प्रोग्राम दे विच

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: प्रोग्राम चल रहा जी। हेलो फरमाइश, 23 अंतराल तो बाद आओ स्वागत कर दी हाँ अपने प्रोग्राम दे विच अपने अगले कॉलर होना दा। हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी।
1: मैडम जी, मैं राजू बोलदा जी, चंडीगढ़ तो।
0: जी राजू जी, स्वागत है प्रोग्राम दे विच।
1: धन्यवाद जी थोड़ा भी
0: जी। राजू जी, फिर आज गीत केड़ा सुना दिए?
1: काला पानी फिल्म दा सुना दो तुसी।
0: ठीक है जी, प्रोग्राम दे विच फोन करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होण वालियां पंजाबी खबरां दा प्रसारण रोज शाम 7 किया जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 सालां दी कामयाबी दी कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग दी जुबानी।

0: ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਿਹਾਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਬਰਕਰਾਰ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा में मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे।

0: वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री इचलकरंजी में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विश्वभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 11:05 वज रहे ने ते आओ तुहानूं सुनाने आ तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। जी दोस्तों, इस प्रोग्राम नू रोज़ाना इस वेले तुसी सुनदे हो ते मैं अज तुहाडी दोस्त वीनस हाजिर हाँ इस प्रोग्राम नू लैके। इस प्रोग्राम विच तुसी सानू फरमाइश करदे हो अपने मनपसंद गीत सुनन दी, ओह भी पंजाबी। ते पंजाबी गीतां नू सुनन वास्ते तुसी की करना है, वट्सअप ते एक नंबर तुहानू नोट करवाने आ। उस नंबर नू नोट करके तुसी साडे नाल जुड़ जाओ ते टाइप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम ते नाल दे नाल उस गीत दे बोल टाइप करो जिसका तुसी सानू फरमाइश करके सुनना चाहते हो। सो फोन नंबर नोट करो 9465536077 यानी कि 9465536077। सो फटाफट फोन चुको, वट्सअप ते जाके सारी डिटेल टाइप करो ते नंबर ते सानू भेज दिओ। असी तुहाडा नाम लैके, तुहाडे शहर दा नाम लैके तुहाडे दसे होए गीत नू तुहानू सुनावांगे, तुहाडी फरमाइश पूरी करांगे। सो प्रोग्राम दा शुरुआती गीत सुनाउण जा रहे हां तुहानू, ते जुड़े रहो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तमक जलंधर पैंदी।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गाँव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में

0: आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमरीकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असीं आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 12:05 बज रहे ने। आओ सुनते हैं पारिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: जी
1: तो ये जिहड़ी एक डेफिनेशन है, ये हेल्थ की डेफिनेशन है।
0: जी
1: तो जिहड़ा पहला पोर्शन होता है तो सम दोष है, सम मतलब ताड़ी बॉडी च हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए है, दोष बैलेंस होने चाहिए है,
0: जी
1: सम धातु यानी कि ताड़ी टिश्यू लेवल सब बैलेंस होने चाहिए है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन कितनी अच्छी गल है भी दसी हुई है कि ताड़ी जिहड़े तुसी खुश होने चाहिए, तुसी हैप्पी होने चाहिए हो। तो वो उस टाइम ते ये चीज़ा अपनांदे सी लोग,
0: जी
1: लोग योगा करते सी, इदा दी योग योगा वाली एक्सरसाइज करते सी, प्लस जिहड़ी आयुर्वेद विच जिस तरह लिखा उस तरह चलते सके, अपनी दिनचर्या या ऋतुचर्या जिहड़ी होंदी सी
0: बिल्कुल
1: उसनू यूज़ करते सी, ते
0: जी
1: तां ही ठीक रहिंदा सी। ते सानू चाहिदा कि सानू दोबारा ती अपने उस दे विच पुरानी जिहड़ी नेचुरल जिहड़ी थैरेपी है उहनां विच आना चाहिदा।
0: बिल्कुल, तुसीं बहुत वधिया गल कीती है कि जदों सूरज चढ़ता है तो सानू उठ जाना चाहिए है, सूरज ढलता है तो सानू अपनी गतिविधियां बंद कर देनियां चाहीदियां ने। पुराने जो लोग हुंदे सन वो कदे भी घड़ी का सहारा नहीं लैंदे सन, घड़ियां जदों नहीं भी होंद विच आउंदियां सन तो उस वेले वो परछावियां दे नाल ही माप लैंदे सी कि कितना समा होया होएगा, तो जदों पंछी सवेरे जागते ने किसी अलार्म दे नाल नहीं जागते,
1: वेरी नाइस, बहुत अच्छी
0: ते
1: गल कह रहे हो।
0: बिल्कुल वो शामी भी सूरज ढलदे सार चहचहाउंदे ने, खुशी खुशी अपने आलणियां च जांदे ने, ते सवेरे उठदिआं भी जिवें एक संगीत पैदा हुंदा इस तरह दा, कोई बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक पैदा करदे ने, ते इन्हां नूं कोई भी दवाई खाण दी लोड़ नहीं हुंदी।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
0: ते तुसीं दस्सिआ कि इसे तरह ही पंछियां वांग कुदरत दे हर नियम दे वांग साडा शरीर भी है, असीं भी उस कुदरत दा हिस्सा हाँ, ते जेकर असीं इसे तरह अनुशासन दा पालन नहीं करांगे तां असीं बीमार तां होवांगे। सो हुण इंसान ये सोचता है कि सानू तां काम ही बहुत ने, असीं सवेरे किद्दां जाग जाइए, कुछ नाइट शिफ्ट भी करदे ने कि साडा कोई सिस्टम ही नहीं है, साडा कोई लाइफ स्टाइल रूटीन ही नहीं है, ते ओह फिर की करन।
1: हाँ बहुत अच्छी क्वेश्चन है मैम। मैं हुण तुहानूं इही एग्जाम्पल देंगा, मेरी अपनी बेटी है,
0: जी
1: शी इज़ डूइंग फिजियोथेरेपी कर रही है, वो मेरा बच्चा इस तरह है। उन्होंने मैं कि जैन जी जी सारी दी सारी है, वो अजकल उन्होंने एक बड़ा अच्छा लगता कि रात को असी जागीए, ठीक है असी पढ़िए भी राती, सारा काम जिहड़ा असी राती करिए।
0: जी
1: तो मैं उन्होंने ना एक ट्रिक दसिया कि मैं क्या बेटे तू जो कॉलेज तो तुम आँदे हो आके तुसी अपना 7 बजे तक करना सो, 7-8 बजे तो सौ के ते 12 बजे उठ के ते तुसी 1-2 घंटा अपना पढ़ो फिर सौ जाओ, छो
0: जी
1: सौ के फिर मुड़ के जरा 3, 3:30, 4 बजे 4 बजे, क्योंकि वो तो सारी सारी रात ही जागते रहेंगे हैं
0: जी
1: बच्चे। उन्होंने फिर मैं क्या कि तुसी ना डिवाइड करके सौ, जिदा आके 2-3 घंटे सोए, फिर अपना 2 घंटे काम किया, फिर 3 बजे तक 3:30 बजे तक तुसी सौ जाओ, 4 बजे उठो, उठ के 4 बजे तो लै के तो तुसी 7 बजे तक अपना फिर पढ़ो जो भी तुसी काम करना, 7 बजे तो लै के जो कॉलेज तुसी जाना 1.5 घंटा उस तो पहला भी सौ के
0: जी
1: कॉलेज चले जाओ, आओगे उस तो बाद फिर तुहानू जे नींद आती है तो फिर भी तुसी इस तरह, मतलब उन्होंने एक सिस्टम दसे, क्योंकि वो बच्चे जड़े सारी सारी रात ही जागन लग पे है,
0: जी
1: तीन तीन चार चार बजे तक जागते, 4 बजे तक जाके वो सौंदे हैं मैम।
0: बिंग डॉक्टर, तुसी साढ़े सुनने वाले नूं ये गल भी दसो कि जदों असी रात नूं नींद पूरी करते हाँ तो तड़के उठ के पढ़ते हाँ तो उस दे नाल एकाग्रता दे विच किन्ना क फर्क पैंदा है।
1: एग्जैक्टली देखो 3:30 बजे की मैं हमने तुहानूं गल दसी, 3:30 बजे एक ब्रह्म मुहूर्त है, साडा पुराने शास्त्रां दे विच भी लिखा हुआ है।
0: जी
1: उस टाइम ते जिन्ने भी साडे हॉर्मोनस है, खास करके कहिंदे एक कॉर्टिसोल हॉर्मोन है, देखो उस टाइम तो पता नहीं सी किसी नूं कि हॉर्मोन कॉर्टिसोल हॉर्मोन है,
0: जी
1: लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली देखिया सीगा जिहड़े बच्चे सीगे स्टूडेंट सी उस टाइम दे विद्यार्थी हुंदे सीगे, सवेरे वो उठ के जदों लर्न करदे सी, लर्निंग पावर बड़ी अच्छी हुंदी सी, चाहे तुसी कोई भी काम करो वो भी बहुत वधिया हुंदा सीगा।
0: जी
1: लोग उस टाइम ते भी तुसी देखो ब्रह्म मुहूर्त च उठ के 4 बजे जिहड़े कम्मां नूं अपने चले जांदे हुंदे सीगे, जिहड़े मजदूरी भी करदे सी या जिहड़े अपने खेतां च काम करदे सी, 4 बजे तो लैके 11 बजे तक वो अपना प्रॉपर काम करदे सी, 11-12 बजे आंदे सी, और बहुत अच्छा टाइम देखो पूरा एक बायोलॉजिकल क्लॉक सी
0: जी
1: कि देखो 4 बजे तो लैके 11 बजे तक वो काम करदे सी, आके अपना 12 बजे जदों उन्होंने भुख बहुत वधिया तरीके नाल दे सी खाना खाते सीगे, फिर उस तो बाद शाम नू जिहड़ा मिनिमम भोजन अपना खाना खाते सीगे 5-6 बजे तक खा के, पिंडा च इदा ही सी, पुराना सी हजे
0: बिल्कुल
1: भी यह ट्रेंड चलता है,
0: जी
1: और
0: जी
1: जिस तरह ही सूर्य डुबदा सी वो फिर सौ जाता सी, उही वाला पॉइंट सीगा कि 7-8 बजे सुते सौ जाते सी, 12 बजे तक तो उन्हों का वो तो उठते सी जाके 3:30 बजे पूरे, जे वो 8 बजे सुते है तो सिद्धा डायरैक्ट 3 बजे उठते सी, 3:30 बजे उस वेले उन्हों की नींद ही पूरी हो जाती सी।
0: जी
1: तो मैं एक छोटा जि ट्रिक अपने बच्चे ने भी दसे से कि भी है, और मैं सारी जेंजी लिए है कहूँगा कि इस तरह करना चाहिए है तुम।
0: हुण गल करदे हां लाइफ स्टाइल नाल जो जुड़ियां साडियां शरीरक समस्यावां ने, जेकर साडा लाइफ स्टाइल बहुत खराब है तां सानूं कीड़ियां कीड़ियां बीमारियां हो सकदियां ने।
1: देखो 3-4 जिहड़ियां डिजीज

0: कि कोई किसी वास्ते, मैं किसी लिए पर्सनली नहीं, मेरा एक अपना थॉट है कि अगर कोई इमीजिएटली अपने आप नूं ठीक करने लिए मेडिसिन ले रहा है, बिल्कुल लो, उहदे नाल नाल स्टैंड बाय जिहड़ा है एज ए सपोर्टिव मेडिसिन, आयुर्वेदिक दी मेडिसिन जरूर लवे
1: जी
0: और योगा भी करे। योगा करन दे नाल नाल कई बारी डॉक्टर्स अपने आप ही कह देंदे हैं कि हुण तुहाडा ब्लड प्रेशर जिहड़ा जी ठीक हो गया, तुहाडी शुगर लैवल्स ठीक हो गया,
1: जी
0: वो अपने आप ही डोज़ घटाउण देंदे आ। तो साडा थॉट इस वल होना चाहिए कि साडी मेडिकेशन जिहड़ी है घट तो घट आनी शुरू होवे, चाहे वो कोई भी मीनस हो, चाहे वो योगा है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो कोई भी
1: जी
0: होम्योपैथी है। तो ये सारे वास्ते दरवाजे खुले होने चाहिए है। एलोपैथी तो अपने आप च बहुत वधिया वै कि वो सानू, उन्हें हर पासे सानू इस वेले जिहड़ी लेटेस्ट साइंस है उन्हें सानू हर पासे बचा के रखे है, पर सानू नाल दी नाल सारियां पैथियां नू नाल लैके चलना जाना बहुत जरूरी है। अज दी जिहड़ी समा आ, मैम एग्जाम्पल लेंगा
1: जी
0: चाइना, देखो हुण साढ़े तो किन्ना अगे हैगा, तो चाइना दे विच कुछ ऐसियां हर्ब्स है जिन्हां दे इंजैक्शन भी बन चुके है और वो आईसीयू दे विच, तां जिन्हां नू पता, डॉक्टर्स नू पता होएगा, फालसी गोइंग एक इंजैक्शन है
1: जी
0: जिहड़ा कि आईसीयू दे विच यूज़ किया जाता है, और वो जिहड़ा है इंजैक्शन कित्थों उन्होंने किया, एक चाइनीज़ हर्ब है जितों डिवेलप किया है।
1: ठीक है
0: तो जे असी सोचिए, मेरे थॉट है, मैं किसी ते कोई इंपोजिशन नहीं है, मैं सोचिए अगर असी इस वाले पासे तुरीए तो साढ़े नेशन वास्ते है बहुत अच्छी गल होएगी कि असी बहुत अगे अपरूट होवांगे।
1: बिल्कुल जी, आयुर्वेद तां साडे इक देश दा बहुत ही पुराना इहो जिहा माध्यम है जिस दे जरिए असीं कुदरत दे नाल जुड़े रह सकदे हां। हुण इक सवाल होर पुछना बणदा है कि जदों असीं योगा कर रहे हां ते योगा नाल जुड़े हुए हां तां उस आयुर्वेद दे मुताबिक, क्योंकि तुसीं दस्सिया कि आयुर्वेद दे विच साडा जो व्यवहार है या साडा आहार है उह सब उसदा ज्ञान दित्ता होया है, ते सानूं उस समय आहार किहो जिहा लैणा चाहीदा है।
0: बहुत अच्छी गल मैम कर रहे हो तुसी। तुसी हुणे एक अजकल ट्रेंड सुने होना, मिलेट्स का ट्रेंड जिहड़ा हैगा
1: जी
0: नवा चल गया हैगा।
1: बिल्कुल
0: ये मिलेट्स का ट्रेंड अज दा नहीं है मैम, यह भी बहुत पुराना ट्रेंड है।
1: जी
0: तुसी रागी दी गल सुनी होनी है, तुसी
1: जी
0: बाजरे दा आटा सुनया है,
1: जी
0: कोदों सुनया है,
1: जी
0: सुआंका दे चावल सुने हैं,
1: बिल्कुल
0: ठीक है जी। हुण असी दोबारा दी शुरू हो रहे हैं। बेसिकली जिहड़ा साडा स्टेपल फूड सीगा वो वीट ते राइस नहीं सीगा।
1: जी
0: वीट ते राइस तां ए 300 to 400 ईयर्स होए ने जिहड़ा आया, लेकिन साडे चरक संहिता दे विच, आयुर्वेद दे विच प्रॉपरली एक साडा चैप्टर है, 27th चैप्टर है, उहदे विच सारी डिटेल लिखी है किहड़ा साग साग सब्जी, किहड़ा जिहड़ा है प्लांट, किहड़ा जिहड़ा अपनी आपां कह सकदे हां दालां ने या कुछ है, वो की करदियां।
1: जी
0: जिदा हुण साडे आयुर्वेद च वात पित्त कफ दी जिहड़ी है वो सारी चलदी है, ते हुण साडे एक शाक जिहनूं असीं साग कहिंदे आ, जीवंती शाक, असीं सरसों दा साग कहिंदे आ, सरसों दा साग बेस्ट नहीं मन्निया गया, उहदे च जीवंती दा शाक जिहड़ा हैगा वो बेस्ट मन्निया गया।
1: जी
0: सरसों दा साग भी अच्छा है, मतलब उहदियां प्रॉपर्टीज़ दसियां। तुसीं देखो एक पूरा चैप्टर है जिहदे विच हर एक प्लांट दी, हर एक चाहे वो सीरियल्स ने, लैग्यूम्स ने, जो भी यूज़ है उहनां दी की प्रॉपर्टीज़ है। और खदों सत्तू देखो, पुराने सत्तू हुंदे
1: जी
0: सी
1: जी
0: खांदे, हुण फिर असीं उसी चीज़ां ते दोबारा आ रहे हैं, सत्तू पीना शुरू कर रहे हैं,
1: जी
0: गर्मियों से सत्तू पीने हैं गया। तो वो जिहड़ियां चीज़ां क्यों क्यों मुड़ के आ रही हैं, क्योंकि वो साडे लई बेनीफिशियल है। असी किते ते आ गए स्टैपल फूड वीट एंड राइस ते पूरी तरह असी अपने आप
1: डिपेंड
0: नूं
1: कर लिया
0: डिपेंड कर लिया, उत्थे एक इकट्ठे हो गए एक जगह
1: जी
0: ते। सानू वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए। हुण तो चलो अच्छा हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गई है,
1: जी
0: बहुत अवेयरनेस आ रही है, तो मैं ही कहूँगा कि यह डाइट के उत्ते सानू आना चाहिए। सानू हर तरह की चीज़ जिहड़ी, देखो साडा साडा अपना शरीर ही सानू दस दिंदा है कि सानू ए सही सानू सूट करता है कि नहीं करता।
1: जी
0: हुण तुसी देखो कोई सुंड ते गार्लिक है, इहदी पेस्ट दे नाल जी उहनू यूज़ करदा, किसी नू तां बहुत अच्छी सूट कर जांदी है,
1: जी
0: ते किसी नू देईए ते उहनू जलन होण लग पैंदी है।
1: जी
0: ये क्या है, ये उहदी प्रकृति किस तरह दी है,
1: बिल्कुल
0: किहदी प्रकृति कफज है, किसी दी पित्तज है, किसी
1: जी
0: दी वातज है, ते बॉडी साडी आपे दस दिंदी कि साडे लई किहड़ा फूड सूटेबल है ते किहड़ा नहीं है। ते सानू सब कुछ खा के जरूर खाना चाहिए है, देखना चाहिए है, ट्रायल करनी चाहिए है, और ये तो नॉलेज भी रखनी चाहिए कि मेरी बॉडी किस तरह की है, पित्तज है, कफज है, उस हिसाब नाल सानू वो फूड खाना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर दी।
1: बिल्कुल तुसी सही कहा, ते ये बहुत जरूरी है कि असी योगा दे नाल भी जुड़िए ते साडा लाइफस्टाइल भी सही होवे ते साडा आहार भी सही होवे।
0: एग्जैक्टली मैम,
1: इन्हां दा जेकर सही असी कंबीनेशन बनावांगे तां ही असी पूरी तरह तंदुरुस्त रह सकदे हां। कई बार असी गलत ही करदे हां कि साडा आहार चंगा नहीं है पर असी एक्सरसाइज कर रहे हां, ते जेकर साडा आहार चंगा ते नाल कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, ये सब कुछ साडियां जो लाइफस्टाइल दिक्कतां ने इन्हां

0: जी, गीत संगीत दे सिलसिले दे विच अगला जिहड़ा गीत सुनना चाहुंदे ने श्रोते, कहिंदे जी जगजीत सिंह दी आवाज़ 'च गीत सुना दिओ। ते ये फरमाइश आई है पिंड राजपुरा जिला फाजिलका तो, हरदीप सिंह रामगढ़िया, जगवीर सिंह जगसीर सिंह, ज्वाला सिंह बराड़, डॉक्टर परमवीर ते दीपू पिंड ककमौर माजरा जिला कैथल हरियाणा तो, रमेश कुमार लोट, संतोष राणी, अंकुश अंकिता ते पूरा परिवार इन्हां दा, पिंड लोगर ठाकरा वाला फिरोजपुर तो, स्वरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरमान सिंह ते पोतरा गुरनूर सिंह।
1: जी, तो इस गीत की फरमाइश सानू भेजी है पिंड होला वाली तो। फरमाइश भेजण वाले ने रूप राणी, मानवी रूहानी, किरण राणी। इस गीत की फरमाइश सानू भेजी है जी पिंड खाने की ढाब मलोड़ तो, शमशेर सिंह कौलधार, जसविंदर कौर, करण प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तनवीर अते मनराज। इस गीत की फरमाइश है जी बागा पुराणा तो कर रहे हैं गगनदीप कौर, गुरप्रीत कौर, परमजीत कौर।

0: ओए होनी तेरे हाय हानी तेरे गोरे रंग ने सारे पिंड च पुआ हड़ी ही पहाई।
1: जी इस फरमाइश तो बाद साढ़े को अगली फरमाइश पहुंची है जी गुरदास मान होर दे गायत गीत की। यह फरमाइश सानू भेजी है जी भवनाल हाजीपुर तो। लिखण वाले ने बिमला पूजा परमजीत विजय कुमारी अलीशा रजनीश केयर सिंह चितराम उन्हों का पूरा परिवार पिंड मलोट तो जगतार गिल गैवी गिल अमनदीप गिल कोटली कला पंजाब तो जादविंदर सिंह सुखविंदर सिंह रविंदर सिंह मनजीत सिंह गुरजोत सिंह।
2: और अनुराधा ये फरमाइश है गुज्जरपुर कला नवाशहर तो खुशहाल सिंह मल सुनीता रमन पूजा त्रिशन रमित गुरनीत ते अमित हुना दी। और बहुत सारिया फरमाइशा ने जी।
1: जी तो साढ़े को फरमाइश है जी पहुंची है जी योगनगर बुढ़लाडा तो नरेंद्र मेहता वरिंदर मेहता गिरिराज मेहता सिमरन मेहता हनी मेहता। तो आओ सुनते हैं इन्होंने सारे की फरमाइश से गुरदास मान का गाया हुआ गीत।

0: जी श्रोते सुन रहे ने जी अपना मनपसंद सिलसिला झांजरा दे बोर ते अगली फरमाइश आई है जी पिंड त्यूणा तो मंगा सिंह बराड़ गुरमेल सिंह बराड़ महकदीप कौर बराड़ ते करनदीप सिंह बराड़ दी अजीत नगर मलोट तो छिंदर सिंह छिंदा सतनाम कौर दिलप्रीत सिंह गगनदीप कौर रौनकदीप कौर ते पूरा इन्हां दा परिवार फरमाइश लिख के भेज रहा जी
1: जी ते इन्हां सारिआं ने जी फरमाइश कीती है दीप ढिल्लों ते जैसमीन जस्सी दे गीत दी ते फरमाइश भेजण वाले ने मलोड तों कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल मुक्तसर पिंड मोहला तों पाल गिल गुरत्याल गिल साधु गिल दिशा मोहला दर्शन बराड़ ते मलकीत कुड़ियाणा पिंड बालद खुर तों फरमाइश भेजण वाले ने जी अश्विनी गर्ग विनोद गर्ग प्रियंका गर्ग ते इन्हां दा पूरा परिवार फाजिलका पंगाला तो फरमाइश भेजन वाले ने मोहन सिंह गुरप्रीत सिंह सुखप्रीत सिंह चौहान ते रवनीत कौर चौहान ते पंगाला तो ही जगतार गिल गुरमीत गिल नाजम गिल सुखमन गिल कमलदीप गिल एस के शर्मा जगतार टेलर ते आओ सुनते हैं इन्हां सारयां दी फरमाइश ते दीप ढिल्लों ते जैसमीन जस्सी दा गाया

0: जी अनुराधा झांझड़ा दे बोर्ड की आखिरी फरमाइश भी पढ़ दें जो कि आई है, ग्लोरी बाबा ते लाची बाबा दा गीत सुनना चाहते ने आदर्श नगर मलोट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा ते निवान शर्मा, बाजवा कलोनी पटियाला तो सत्रोहन, कृष्ण कुमार, रवि कुमार, विशाल दिमानशी, आलिया, पूनम, रीनू ते पार्वती, चकला बाजार समाना तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल ते पूरा खुशदिल परिवार
1: जी, ते पिंड गंदवाला हाजिर खान जिला फाजिलका तो सुखा सिंह, सिद्धू सतिंदर कौर, अभिजीत सिंह, खुशप्रीत सिंह, नवनीत सिंह अते पूरा परिवार। इसे गीत की फरमाइश जिहड़ी है सानू भेजी है जी जिला मुक्तसर पिंड मोला तो पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मोला, दर्शन बराड़, मलकीत कुड़ियाणा ते कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल। मुलापुर दाखा तो भेजण वाले ने फरमाइश बिट्टू जैन, मट्टू जैन, राजेश जैन, अरुणा जैन, अरिहंत जैन, सुरभि जैन, रश्मि जैन, नीलम जैन, दीपक जैन, गौतम जैन, बनीता जैन ते सारिका जैन। इसे गीत की फरमाइश सानू भेजिए जी तलवाड़ा हाजीपुर तो सुनील जोशी, पंखू, नीतू, ममता, सुरजीत, बिशनदास, मलकीत भारद्वाज ने। तो आओ सुनते हैं इन्हां सारयां दी फरमाइश ते ग्लोरी बाबा ते लाची बाबा दा गाया होया एक गीत।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष

0: चुना गया है वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज थे। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 1:05 वज रहे ने। आओ हुण तुहानू साडे दिन विच प्रसारित किए जाण वाले बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उन्हां दा प्रसारण समां दस दईए।

नमक हलाल इस फिल्म का गीत तुसी सुन रहे सी किशोर कुमार दी आवाज विच। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत। फिल्म मिस्टर इंडिया चुलिया गया, आवाजा कविता कृष्णमूर्ति ते किशोर कुमार दियां।

0: दिल्ली जाना पाएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
0: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट की वैबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 01-2311-2428 ते संपर्क करो।
0: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
2: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: हेलो
2: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਦੇ MA ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਮਯੂਰਭੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਾੜਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਅੱਜ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਚੇਨਈ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हमराह उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कल मुनाकिद होने वाले नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल मुलगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने हेती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर पहली जीत हासिल की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आबाई गांव पहाड़पुर का दौरा किया और सदर जमहूरिया के साथ उनकी सालगिरह की तकरीब में भी हिस्सा लिया। वहां पहुंचने पर उड़ीसा के गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति और वजीर आला मोहन चरण मांझी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संथाली जहेरा गोशानी पीठ और हो जहेरा जाकर प्रार्थना की और गांव के अहम इदारे देखने गए, जिनमें हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज और पहाड़पुर स्कूल भी शामिल हैं। मोहतरमा मुर्मू ने हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज में तलबा के साथ बातचीत भी की। बाद में सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने एक अहम अवामी प्रोग्राम में शिरकत की, जो मोहन चरण मांझी की जेर क्यादत उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के सिलसिले में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 47,600 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा और उनका इफ्तताह किया जाएगा। इन प्रोजेक्टों में तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनती बुनियादी ढांचा, आबपाशी और पीने के पानी वगैरह समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने 16 तरह के फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। अद्वियात के तकनीकी सलाहकार बोर्ड की जानिब से कायम करदा माहरीन की एक कमेटी की रिपोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लेने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन अद्वियात में दाफे अमराज का कोई उनसुर नहीं पाया जाता और ये सेहत के लिए खतरा साबित हो सकती है। जिन अद्वियात पर पाबंदी लगाई गई है उनमें एंटीबायोटिक पर मबनी कुछ अद्वियात, दर्द से राहत देने वाली अद्वियात और कुछ डर्माटोलॉजिकल अद्वियात शामिल हैं। भारत ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोज़ा मीटिंग का अहतमाम करेगा, जो पीर से शुरू होगी। इस मीटिंग की सदारत कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के कौमी सलामती के सलाहकार और वफदों के सरबराह दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के कल फिर से होने वाले इम्तिहानात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर में

0: और ड्रिल कर रही है। यह सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और पूरे दिन जारी रहेगा। मुल्क भर के इम्तिहानी मराकज में इस तरह की ड्रिल हो रही है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी अमले के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली कैंट और अशोक विहार फेज 2 के इम्तिहानी मराकज में इस मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। इम्तिहानात को साफ, शफाफ और खुश उसलूबी से कराने की खातिर ये मश्क कराई जा रही है। एनटीए ने बताया है कि मुल्क भर के 551 और दूसरे मुल्कों के 14 शहरों में इम्तिहान मुनाकिद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। एजेंसी ने यह भी बताया कि मुनसिफाना और साफ सुथरे इम्तिहान को यकीनी बनाने की खातिर कई मरहलों वाली सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। इसमें सीसीटीवी के जरिए निगरानी और आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक शामिल है। इसके अलावा पुलिस मुहाफिजत में इम्तिहानी साजो सामान पहुंचाने के लिए जीपीएस की सहूलत से लैस गाड़ियां भी शामिल हैं। कल ये इम्तिहान 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में रियासती सतह के बैन अल-अक़वामी योग प्रोग्राम में मेहमान खसूसी होंगी। ये प्रोग्राम सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सदर जमहूरिया आज शाम भारतीय फिजाइया के खसूसी तैयारी से जबलपुर पहुंचेंगी। हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगू भाई पटेल उनका खैर मकदम करेंगे। सदर जमहूरिया योग के प्रोग्राम के बाद रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जाएंगी, जहां वो यूनिवर्सिटी की 36वीं जलसे तकसीम इसनाद में मेहमान खसूसी होंगी। इस तकरीब में रियासती गवर्नर भी शामिल होंगे। सदर जमहूरिया के दौरे से पहले जिला इंतजामिया ने डुमना एयरपोर्ट, गैरिसन ग्राउंड, सर्किट हाउस और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 15 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, गुब्बारों और पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी है। योग का बैन अल-अक़वामी दिन 2026 कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस साल योग का 12वां बैन अल-अक़वामी दिन सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग के मौजू के तहत मनाया जा रहा है, जो हर उम्र के अफराद के लिए योग की अहमियत को उजागर करता है। इस सिलसिले की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क भर के 100 तारीखी और नुमाया मकाम पर खसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे और योग की रिवायत को यकजा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नई दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने योग के दिन की तकरीबात से कबल योग के लिए दौड़ और एक खसूसी सेशन का इनेकाद किया। इस मौके पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग को शामिल करने पर जोर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि योग को सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि पूरे साल बाकायदगी से इसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ आसन और वर्जिश के जरिए रोज़ाना योग तर्ज ज़िंदगी से मुतालिक बीमारियों पर मुअस्सर तौर पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकता है। योग के बैन अल-अक़वामी दिन की अहम कौमी तकरीब कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मुनक़िद होगी। इस साल सकाफती ताल्लुकात के भारतीय कौंसिल ICCR और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के इश्तराक से दुनिया भर में तकरीबन 2,500 मकाम पर योग के दिन की तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मजबूत और मौसर रहनुमा के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया की सबसे बासर शख्सियात में से एक करार दिया। एक अमरीकी न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऐसे दौर के बाद इस्तेहकाम फराहम किया है जब मुल्क में क़यादत बार बार तब्दील होती रही। उन्होंने मजीद कहा कि जनाब मोदी गुज़श्ता 12 साल से ज्यादा अरसे से इक़्तदार में हैं। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के साबिक सीनियर अफसर दीपांकर मुखोपाध्याय का कल कोलकाता में इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थे। जनाब मुखोपाध्याय की उम्र 77 साल थी। उन्होंने इत्तलात और नशियात की वजारत के मुख्तलिफ शोबों और आकाशवाणी की खबरों के महकमे में भी काम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल की आवाम को मुबारकबाद दी। खबर मिली है कि इसराइल ने जुनूबी लेबनान के सजद इलाके में जबल अल राफे इलाके में हवाई हमला किया। यह हमला कल लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के फौरन बाद किया गया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD کیرالا ماہے تمل ناڈو پڈوچیری کرائیکل اور ملک کے

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रंगरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों,

0: हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी

0: और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक

0: अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी

0: के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं
2: असीं आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दिन दे 2:30 बज रहे ने। आओ सुनदे हां प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम दे कलाकार ने इंद्रजीत मुक्सरी। आओ सुनते हां इंद्रजीत मुक्सरी दी आवाज विच हीर।

हाँ महाराज मैं इहदा जवाब जानदा। वो कहते दस फिर साढ़े राज विच कुल कहिंदे जी 95,463 कां हन, भला उन्हें किदा गिने होणगे। पर उन्हें जवाब दे दिता कि 95,463 कां हन। अकबर हैरान रह गया ते बोले, जेकर असी गिनती करवाइए तां कां इस तो ज़्यादा जां घट निकले तां। ते वीरबल ने हस के बहुत ही सियाणा भरिया जवाब दिता, कहिंदे जेकर ज़्यादा निकले तां इसका मतलब है कि दूजे राज्यों तो कां साडे राज विच अपने रिश्तेदारां नूं मिलन आए हन, ते जे घट निकलन तां इस दा मतलब है कि साडे राज दे विच दूजे राज्यां विचों अपने रिश्तेदारां कोल घूमण आए ने। वीरवार दा ये हाजिर जवाबी जवाब उत्तर सुन के बादशाह अकबर बहुत खुश होए ते उस नूं बहुत कीमती तोहफे दित्ते। ते दोस्तों इस तो ये गल है कि जे बीरबल जिहड़ा बुद्धिमान सी ते अपनी प्रीख्या दे विच पास हो गया, जबकि गल विचों तां ये हैगी आ, एक मिनट इधर कुछ साडा कंप्यूटर कह रहा, वह भी सुन लैने। कंप्यूटर नूं भी ते सानूं भी सारे नूं हासा आ गया। हासा इस गल ते आया कि असीं तां यही सोचदे रहे कि कावां दे पिछे कौन दौड़ूगा, लेकिन मैनू तो हादसा ते कंप्यूटर नूं इस करके हादसा आ गया कि जिहड़े परौणे कहिंदा आए आ, ज़्यादा होए तो आए हुए आ परौणे, तो जे घट होए तो गए हुए परौणे। हुण किद्दां पता लगेगा कि आए हुए परौणे किहड़े सी ते गए हुए किहड़े सी कां। तो दोस्तों ये हादसे दीआं गल्लां इसे तरह चलदियां रहणगियां, क्योंकि हादसा जिंदगी दे विच इक मूल मंत्र है जिहदे नाल असी खुश रहिए ते साडे जिहड़े सारे ही काम जिहड़े खुशी खुशी हुंदे आ, हमेशा खुश रहना चाहीदा। ते वीरवल वांगू हमेशा ही चतुर ते दिमागी होना चाहीदा तां कि उसी वक्त कोई ना कोई ऐसा जवाब दिता जावे जिहदा कोई जिसने सोचिया भी ना होवे। ठीक है दोस्तों, चलो चिट्ठियां का सिलसिला भी शुरू कर दें, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां। तो अगला खत साढ़े को आया जी जमशेदपुर तो, हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, नवनीत पाटिया ते पप्पी पाटिया का। तो एक होर खत है जी मंडी गोलू वाला राजस्थान तो, ब्रज लाल चौहान का, नीरज कुमार चौहान। तो इन्होंने कहा जी सारे आकाशवाणी स्टाफ नूं सत श्री अकाल ते नमस्कार, चिट्ठियां मिठियां प्रोग्राम रोज़ाना 3 बजे आंदा। हाँ जी बिल्कुल जी, 3 बजे आंदा। तो कहिंदे जी कार्यक्रम पेशकर्ता नूं नमस्कार ते सत श्री अकाल जी, अपनी पसंद दा कोई भी पंजाबी गीत सुना दिओ। जरूर जी, पिंड कढियाणा जिला फाजिलका पंजाब तों हैगा खत जी। कहिंदे सत श्री अकाल जी, सरदार मलकीत सिंह कढियाणा, मनजीत कौर बठिंडा तो, दीपिंदर सिंह चेयरमैन, पोता गुरशबद सिंह, जीत सिंह कढियाणा समूह बराड़ परिवार, सुखदेव सिंह चाहल बुरज हनुमानगढ़ तो, कुलवंत मलोट। ते इन्होंने कहा जी हरभजन मान का कोई भी गाना सुना दियो जी। असी साडे प्रोग्राम दे विच अक्सर हरभजन मान जी दे गीत सुनाए जाते हैं, पर फिर भी चलो आपां तुहाडी पसंद नूं ध्यान च रखांगे। ते तुसी बाबे मिशने दी बैठक इदां दा गीत लिखिया हैगा, ते सानूं कई वारी इदां दे गीत जिहड़े लभणे वी थोड़े मुश्किल हो जांदे आ कि बाबे दी, देखदी हाँ मैं जे तुहानूं पसंद दा गीत मिल जाए, नहीं तां आपां जरूर कोई ना कोई गीत तुहानूं सुना दिंदे हाँ। चलो कोई गल नहीं, आपां गीत सुनाने हाँ तुहाडी पसंद दा। तो एक होर साडे कोल खत भी आया होया है जी, जिन्हां ने साबर कोटी दी फरमाइश भी की हुई है जी। चलो आपां ये गीत सुन लैने पहला, फिर इन्हां दे गाने दी फरमाइश भी पूरी करांगे।

0: महीना चढ़ी आउंदिया कटावे काली तुर ना पाऊगा बड़ा महंगा वे पछुंदियां पहन कनिया मेरा पिज जुवारी दा लहंगा वे पछुंदियां पहन कनिया मेरा पिज जुवारी दा लहंगा वे पछुंदियां पहन कनिया
1: ओते उते बैठ जा।

हे नंगे दादा ना बिरंग चोवे जाओ धरती दा सुआ पिंडा होवे जाओ धरती दा सुआ पिंडा होवे हे दूजू दुपट्टा गुला नारी रे गुलाबी गोरे रंग ने फराटे अच सुरनावे सौरी जाके दो दो पिटने कुंड कदना मड़क नाल सुरनावे सौरी जाके दो दो पिटने।

0: लाल बुलिया बलौरी चना अखियां, लाल बुलिया बलौरी चना अखियां, तेरे वास्ते जट्टी ने सांब रखियां, तेरे वास्ते जट्टी ने सांब रखियां, कद के संदूक विचों रेशमी रुमाल तेरा मां
1: लो जी ऐसी लास्ट गीत सिगा ते इहदे नाल ही आपां अज दा प्रोग्राम इत्थे ही खत्म करदे हां लेकिन एक वादा जरूर करदे हां कि आपां दोबारा फिर मिलांगे कल नूं फिर नवां प्रोग्राम लैके आवांगे तद तक लई आग्या दिओ नमस्कार ते अगला प्रोग्राम तुसीं सुनोगे साडे मेन चैनल तों जानी कि रीजनल चैनल तों ते इस वार असीं अपना प्रोग्राम इत्थे ही समेटदे हां

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज उड़ीसा के मयूरभंज जिले विच 47 करोड़ रुपए तो वध दे विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृहमंत्री अमित शाह ने अज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं उन्हां दे जन्मदिन ते शुभकामनावां दित्तियां ने। नैशनल टैसटिंग एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 की मुड़ प्रीख्या दे तैयारियों के हिस्से वजो अज एक विशेष देशव्यापी मॉक ड्रिल कर रही है। SEBI ने बाजार समर्था वधाउण, पालना की जरूरतों आसान बनाउण ते नेमबंदी ढांचे नूं मजबूत करन लई कई सुधारां नूं प्रवानगी दे दित्ती है। पंजाब के वख-वख शहरां विच अपने घरों तो दूर रहण वालियां कामकाजी औरतां नूं औरतां दी सुरक्षा ते सहूलत लई समाजिक सुरक्षा महिला ते बाल विकास विभाग वल्लों मोहाली, जलंधर ते अमृतसर विखे 5 वर्किंग वूमेन होस्टल बनाए जा रहे हैं।

0: एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, प्रेशर हम बहुत ज्यादा पहले से ले रहे थे, और शूटिंग करते समय हमारे जो कोचेस की एक्सपेक्टेशन वहां पर और प्लेयर्स का एक थोड़ा सा एक होता है ना मेंटल एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो वो अगर आप देखें पुराने वीडियोज ना तो उसमें दिख रहा था कि हमारे आर्चर्स के चेहरे पे थोड़ा सा वो दबाव था, इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग फंस जा रहे थे, पेरिस में हो लंदन की अगर हम बात करें तो भी। बट नाउ इट लुक्स लाइक ये जो जैसे क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी का एक फियरलेस बैटिंग का तरीका क्या है, वैसे मुझे लगता है कि खासकर हमारी लड़कियों की जो आर्चर्स है लड़कियां उनका एक फियरलेस शूटिंग का अंदाज है जिसकी वजह से सारे ग्रुप पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। I am expecting at least a good finish this time in the Olympics. Asian Games में तो अच्छा होना ही है।
1: बहुत-बहुत शुक्रिया पंकज अठावले जी, साडे नाल सन पंकज अठावले जो कि साबका तीरंदाज ने ते मुंबई दी तीरंदाजी एसोसिएशन दे प्रबंधक भी ने। खेल संसार प्रोग्राम तुसी आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 लई 32 मेंबरी मजबूत भारतीय एथलेटिक टीम का ऐलान कर दिता है। इस टीम विच 22 पुरुष ते 10 महिला अथलीट शामिल ने। कॉमनवेल्थ खेडां 23 जुलाई तो 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड विखे होनियां ने। स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग विच 85.69 मीटर थ्रो करके AFI दे 82.61 मीटर दे योग्यता मापदंड नूं सफलतापूर्वक पार कर लिया ते टीम विच अपनी जगह पक्की कर ली है। स्प्रिंट ते रेस विच गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश गुजर, गुलवीर सिंह, तेजस सिरसे, यशस पलाक्षा ते संतोष कुमार नूं शामिल किया गया। जंप स्विच सर्वेश कुशारे, आदर्श राम, देव मीना, कुलदीप कुमार, मुरली श्री शंकर, लोकेश सत्यनाथन, प्रवीण चित्रवेल ते सिल्वा प्रभु शामिल ने। थ्रो विच ने जी नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, यशवीर सिंह, समरदीप सिंह गिल ते तेजिंदर पाल सिंह तूर। डिकैथलॉन ते रिले विच तेजस्विन शंकर, विशाल टीके, राजेश रमेश शामिल ने। महिला टीम विच रेस ते स्टिपल चेज विच पारुल चौधरी, रवीना ते प्रियंका गोस्वामी ने। जंप ते थ्रो विच पूजा सिंह, मनप्रीत कौर, सीमा पुनिया ते निधि राणी ने। ते रिले टीम विच अंसा बाबू, रशदीप कौर ते नीरू पाठक शामिल ने। आओ अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे एथलेटिक्स कोच सरबजीत सिंह होरां तों जानदे हां कि पंजाब दे केड़े एथलीट्स इस टीम विच शामिल ने ते उन्हां तों संभावनावां किदां दीआं ने।
2: पंजाब चों दो लड़कियां ने क्वालीफाई कीता जी, जिहदे विच 100 मीटर गुरिंदर वीर सिंह, ये खास करके इस करके बहुत मायने रखता है क्योंकि 100 मीटर के पीछे बहुत मुश्किल होता है क्वालीफाई करना कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज आस्ट्रेलिया इंग्लैंड के स्प्रिंटर बहुत चंगे आ, एक किस्म का स्प्रिंट के क्योंकि उसैन बोल्ट भी जमैका तो रहा तो उन्होंने भी पार्टीसपेट करना होंगे, तो उस हिसाब न बहुत टफ आ, 100 मीटर के बहुत आने वाले लिया पै जाएगियाँ कि वधिया एक रस्ता खोल रहा है। मैं गुरिंदर कई बार कह दिता हाँ कि आने वाली पीढ़ी लिए रस्ता खोल रहा। दूसरा तेजिंदर पाल तूर जेडे कि क्वालीफाई बिल्कुल लास्ट मौके पर उन्होंने किया, लास्ट कंपटीशन जो लुधियाना विखे होया उस क्वालीफाई किया। तीसरी रशदीप कौर, रशदीप कौर जी कि वह भी जलंधर की अथलीट रही है कि उदा पिंडों भमा संगरूर है, पर 10-10 साल है तिने अथलीटा ने लगभग जलंधर इतने स्पोर्ट्स कॉलेज से खालसा कॉलेज विखे ट्रेनिंग की है। 12 साल की सी जो जलंधर आ गई सी, बड़ा मतलब परिवार एक छोटा जा गरीब किसान परिवार है जी, 2 किले जमीन आ, 3 भैन तो 1 भरा आ, तो तुम न्यूज़ च देखिया होना काफ़ी कि किदा घरदू कई बार गल् भी सुनिया पी कि अपन कुड़ियों एड्डी दूर भेजता इदा भेजता, तो उ लोग अज बधाइया दे रहे हैं, तो बहुत पोलीटिकल लोग भी बधाइया दे रहे हैं। तो एक मैडल जितने के नाल मैं लगता है कि समाज में एक सेध देना, समाज दे विच एक विश्वास पैदा करना कुड़ियां लई, खास करके जिन्हां कई बार घरों निकल की प्रॉब्लम होंगी है उन्हां लई भी एक रशदीप उदाहरण के तौर पर आई है, तो परफॉर्मेंस भी उहदी वधिया, पिछे वर्ल्ड रिले दे विच भी उसने पार्टीसपेट किया, सब तो वधिया परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिती सी दोनों ही रेसा 52.39 का टाइम कटिया, जिहड़ा कि बहुत वधिया टाइम है। तो अज भी एशियन चैंपियनशिप रिले की चल रही है, तो मैं लगता शाम को उन्होंने रेस है, तो मैडल के चांसिस पूरे आ, उत्थे मिक्स रिले तो 4x4 रिले के पार्टीसपेट कर जा रही है।
1: अंतरराष्ट्रीय पद्धर के एथलैटिक्स कोच सरबजीत सिंह जिन्ह ने गुरिंदर वीर भी कोच किया, इन्हों की गलबात सुन रहे थे कि पंजाब के किहड़े एथलीट्स ने जिहड़े कॉमनवेल्थ टीम में शामिल ने ते उन्हां तों संभावनावां किदां दीआं ने। खेड संसार प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तों प्रसारित किया जा रहा है।

सतगुर सबद उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार तेह मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। गुरबाणी दे इस फरमान तो भाव है कि गुरु का शब्द एक ऐसा दीपक है जिस दे रोशन होया मन दी अज्ञानता दा हनेरा बिनस जांदा है, ते रतना दी कोठड़ी भाव ज्ञान रूपी अमोलक खजाना इंसान नू प्राप्त हो जांदा है। सतगुर दे शब्द नू सरवण करके, उसदे विचारां दा अनुसरण करके कोई भी प्राणी अपने मन अंदर ही उस प्रभु दे दर्शन दीदार कर लैंदा है। बाणी के बोहित साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी मांझ राग विच फरमाउंदे ने, सब किछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोलै सो परम पुलाही, गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। घर दे अंदर ही अर्थात इस शरीर दे विच ही ओ परमेश्वर वसदा है, ओ किधरे दूर नहीं है, ओ प्राणा दा आसरा है, ते ओ इंसान दे अंग संग वसदा है। सारंग राग विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी दा फरमान है, दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा, सतगुर बचन मेरो मन मान्या, हर पाए प्राण आधारा। सरवण करदे हां भाई सुखपाल सिंह होरां वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। इस शब्द गायन कीता सी भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਠੀਕ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो

0: का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
0: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स थी। DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮੂਹ ਗਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
1: ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਬ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਟਾਈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਦਲ, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
4: दीदी नौकरी लग गई।
5: ओए वाह, बधाइयां। हुन बहुत सारी शॉपिंग।
4: हां, नवा मोबाइल, जींस, जैकेट।
5: खैर जा शहजादे, तनख्वाह तो पहला खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहला बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
4: पर दी,
5: देखो कमाई दा एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिदा है, पर पार्टी देन तो नहीं बचेगा तू।
4: हां दी, पार्टी मेरी, बजट तुहाडा।
5: अच्छा,
6: आरबीआई कहंदा है
7: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
0: ਆਹ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਮੂਹ ਗਾਨ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਆ ਸੁਨ ਮਹਿਰਮਾ।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रतिशत खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। कल दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। पंजाब समेत देश भर च योग समागम का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग अभ्यास च देश की करेंगे अगवाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन वालों अज अमृतसर च BJP आगुआ ते वर्करां नाल मीटिंग। पंजाब चोण कमिशन वालों हुशियारपुर नगर निगम, नगर कौंसल गुरु हरसाए अते नगर निगम जलालाबाद ते ममदोट नगर पंचायत के मैंबरां दी चोण लई आम चोणां करवाउण संबंधी प्रोग्राम का ऐलान। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2437 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿਜ਼ ਨੂੰ PSPCL ਚ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ 2026 ਭਲਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ 12ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਹੈ।

0: अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, समृद्ध मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी
1: जी
0: बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई है महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बीनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई, खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगह थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी,
1: जी
0: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं।
1: जी
0: तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा, जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट,
0: ये
1: सशक्तिकरण,
0: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है,
1: जी
0: 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रहा हूँ उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करती, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिंजेंट में लेडी नहीं लीड करते थे,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो
0: जाता। अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारी, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड

0: कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर नहीं, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात यही युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि इसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर एमबीबीएस के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 एमबीबीएस आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी है, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है, 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सिटी जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बन चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे, ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजन,
2: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन पे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग है, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है

0: न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है।
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का पूरा शिक्षा मॉडल था, उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कर वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता। तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहो तो मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले?
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने
1: विकल्प
0: शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं
1: बिल्कुल
0: कि आप जो करना चाहे करो। युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं है।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टेटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में, और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो। तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: इंडिया द्वारा, कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं, और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए, उन्होंने चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहली जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती हुई थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों की थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है।
1: बड़ा समर्थन है,
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है

0: 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती थी। या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, 3 इंस्टॉलमेंट,
0: 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 के, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि ₹1,00,000 तक आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवॉल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है
1: जैसा अभी सरजना जी बता रही
0: हैं, तो वो भी तो वही बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनके गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत में आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान लिया कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका, पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से, 55-60 करोड़ लोग, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कॉपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कॉपरेटिव बनाने हैं, कॉपरेटिव बना करके सिर्फ कॉपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कॉपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ है ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जिन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं, या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्मसम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, कभी वनवास, जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल, वन के रक्षक और संस्कृति

0: रक्षक सबसे ज्यादा वो है।
1: बिल्कुल
0: हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं। तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी। तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर है प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
0: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न। और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद
1: हो जाता है,
0: नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कम वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहे हैं लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत,
0: हम इसको एक अगर देखे तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में
1: फिर
0: जनधन खाते खोले हैं,
1: डायरेक्ट
0: बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी कंडीशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा, मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रख

0: योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ
1: और
0: चलो
1: एक्चुअली
0: मिलता।
1: वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में हो रही
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है। और भी जो
0: तो जैसे
1: मोर्टेलिटी रेट
0: जो
1: है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान,
1: जी
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है,
1: जी
0: ठीक है। उनको जो राशन दिया जाता है, एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं पिछले,
1: 25 करोड़
0: 25
1: लोग जो
0: करोड़
1: है
0: लोग, हाँ
1: वो
0: गरीबी
1: मतलब
0: रेखा से ऊपर उठे हैं। और
1: बहुत
0: डिजिटल
1: बड़ी
0: पेमेंट
1: संख्या
0: देखिए,
1: है।
0: आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है, भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही
0: हाँ
1: हैं वो पूरे देश में है। आपकी
0: सब्जी वाला
1: पेमेंट
0: भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला,
1: जी
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक
0: हाँ
1: सशक्तिकरण है। अगर
0: जी
1: हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी फार्मर्स है। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स है वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स है वो अच्छी भी है, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
2: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ। जहां मैं भी गया था, किसी दिन जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते ही लोग नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल गिरा दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा, वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं
1: प्रोडक्ट
0: उसके,
1: बने,
0: तो मार्केट जो कि एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है।
0: बाजरा
1: अवेयरनेस
0: अवेयरनेस
1: की
0: नहीं,
1: कोई
0: लेकिन
1: खाना
0: सोच
1: नहीं
0: का
1: खाते
0: अंतर
1: हैं।
0: ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं, और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास,
0: एक
1: उनके बच्चे
0: मुझे
1: पढ़े भी
0: बेटे,
1: अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
0: एकलव्य स्कूल का वो नाम लिया कि आदिवासी
1: अच्छा,
0: बच्चों
1: आप जो
0: के,
1: सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे
0: वो
1: हैं।
0: यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन
1: जिसको
0: अगर
1: भी
0: आप
1: नाम
0: देखोगे
1: बोलते हैं।
0: केरल में भी, तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे हो जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे, यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो, कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का कहा कि कोई छूटे ना पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: संजना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे?
0: देखिए मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी
0: जो स्लोगन है।

0: वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ूं, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब
1: जी
0: एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होंगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर, जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। नाइनटी
1: हाँ,
0: नाइन तो हो ही चुकी, हो गई
1: हंड्रेड हो
0: शायद,
1: गई,
0: 100 हो गई
1: हंड्रेड हो
0: है।
1: गई
0: और ये सब चीजें युवाओं को भी
1: हाँ,
0: प्रेरित करती है
1: ये
0: कि हमारा
1: प्रेरित
0: कितना। रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की उपलब्धि
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी। नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए
0: है।
1: हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में, और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स से DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। शाम दे 7:45 हो रहे ने। हुन पेश है प्रोग्राम साहित्य सुधा। अज दा विषय है संस्कृत साहित्य विच युवावस्था वर्णन। माफ करना, वार्ताकार ने मीनू तलवार।
4: संस्कृत साहित भारतीय संस्कृति का आधारभूत स्तंभ है। ये ना केवल साढ़े अतीत का प्रतीक है, बल्कि साढ़े सांस्कृतिक मूल्यों, परंपरावां ते जीवन दर्शन नू आज भी प्रासंगिक बनांदा है। वैदिक काल तो लैके लौकिक काल तक, चाहे वह वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, नीति साहित्य, चाणक्य साहित्य, पंचतंत्र, हितोपदेश, युवा वर्ग नू शिक्षा प्राप्त करन ते अपने चरित्र निर्माण करन वास्ते प्रेरित किया गया है। ते नाल ही युवा वर्ग नू रचनात्मक कम्मा ते ज्ञान दा अर्जन करन नू कहा गया है। ज्ञान अर्जन विच लगान दी सलाह हर जगह ते दित्ती गई है। उपनिषद और गीता वर्गे ग्रंथ जीवन दे गूढ़ प्रश्नां दे उत्तर दिंदे होए भारतीय दर्शन ते संस्कृति दी गहराई नू उजागर करदे हन ते अतीत नू संरक्षित करन तक सीमित नहीं, सगो वर्तमान ते भविख दे विकास लई भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभांदे हन। नाल ही सशक्त युवा तैयार करन विच भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभांदे हन। संस्कृत साहित्य विच युवावस्था, यौवन दा वर्णन बहुत ही विस्तृत ते काव्यात्मक ते दार्शनिक दृष्टि नाल कीता गया है। युवावस्था नू शारीरिक सौंदर्य दे चरम उत्कर्ष, भावनावां दी तीव्रता ते मानसिक चंचलता दे रूप विच देखिया गया है। महाकवि भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतकम विच युवावस्था नू जीवन दी सब तो वड्डी चुनौती ते मोहक अवस्था दे रूप विच वर्णित कीता है। कवि दा मन्ना है कि इस अवस्था विच अज्ञान ते अहंकार मनुख नू सही गलत दा भेद भुला दिंदी है। जवानी विच शारीरिक सुंदरता ते ऊर्जा अपने चरम ते हुंदी है, जो व्यक्ति दे जीवन दे अपने वास्तविक लक्ष्य, जो कि ज्ञान, मोक्ष, परोपकार तो पटका के संसारिक सुखां दी तरफ खिंचदी है। महाकवि भर्तृहरि ने सुजन ते दुर्जन पद्धति विच ए स्पष्ट कीता।

कि युवावस्था विच अच्छे लोकां दा साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवावस्था विच जे मनुख अपनी इंद्रियां ते संयम नहीं करदा, ज्ञान ते विद्या दा सहारा नहीं लैंदा, ते उसका जीवन पशु दे समान व्यर्थ है। पर त्रिहरी लिखते ने कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। विद्या दी महत्ता नु वर्णन करदे होए लिखते हन कि विद्या ददाति विन्यम विन्याद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। युवावस्था जीवन दा सब तो कीमती समा है, ते इसनु भोग विलास विच नाश करन दी बजाए सत्कर्म स्वावलंबन ज्ञान अर्जित करन विच लगाना चाहिदा है। इस साहित्य दी लोक कथावां दी गल करिए ते ए युवावां नु अच्छाई बुराई संघर्ष ईमानदारी दया ते न्याय जेहे विषयां नु बहुत ही सौखे ढंग नाल

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आज हम द ग्रेट माइग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आप शायद कुछ पक्षी या पंछी के बारे में सोच रहे होंगे। जी नहीं दोस्तों, मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूँ। सीमाओं के पार प्रतिदिन आने जाने वाले लोग के प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ श्रेणियों के लिए यानी शरणार्थी, आर्थिक प्रवासी के लिए गतिशीलता को और अधिक कठिन बनाया जा रहा है। वैश्विक प्रवास के नए पैटर्न क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासन वैश्वीकरण से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। एक और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय प्रवास को बढ़ावा देती है, जिसमें विकास, जनसंख्या और लोकतंत्र के इम्बैलेंसेस शामिल है। वैश्विक नौकरियों का संकट, वैश्विक श्रम बाजारों का विभाजन, संचार और परिवहन में क्रांतियां और अंतरराष्ट्रीय सामाजिक नेटवर्क। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय प्रवासन स्वयं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जन्म देता है, जिसमें धन और वस्तु का वैश्विक स्थानांतरण, वैश्विक शहरों का उदय तथा बढ़ती सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता शामिल है। हालांकि व्यापार और पूंजी की तुलना में श्रम की वैश्विक आवाजाही

प्रतिबंधित बिना हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन उन मुद्दों के मूल में है जो इनके लिए जरूरी है, जिसमें राष्ट्रीय पहचान, आर्थिक प्रतिस्पर्धता और सुरक्षा शामिल है। इसीलिए विरोधाभास ये है कि जबकि अधिकांश औद्योगिक देशों के श्रम बाजार की कमी को पूरा करने और जनसंख्या के रुझाने को संबोधित करने के लिए अधिक प्रवासियों की आवश्यकता होती है, फिर भी अधिकांश राजनीतिक और लोक लुभावन दबावों के जवाब में प्रवासन को प्रतिबंधित कर रहे हैं। हालांकि व्यापार और पूंजी की तुलना में श्रम की वैश्विक आवाजाही प्रतिबंधित बनी हुई है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को वैश्वीकरण की कोयला खदान में एक कैनरी बर्ड माना जा सकता है, या तो ये तब फलेगा फूलेगा जब वैश्वीकरण की ताकतें राष्ट्रवाद पर काबू पा लेंगी, या इसकी कमी इस बात का संकेत हो सकता है कि वैश्वीकरण चरम पर पहुंच चुकी है और पीछे हट रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2015 में 244 मिलियन लोग एक वर्ष से अधिक समय तक अपने देश से बाहर रहे, और निश्चित रूप से वे लोग जो अपने देश के अंदर ही बाहर जाते हैं। इस कुल में लगभग 20 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। एक तरफ अपने देश में मजबूर लोगों की ऐतिहासिक उच्च संख्या, दूसरी तरफ प्रवास की कुल संख्या का अभी भी अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा। प्रवास और उसके प्रभाव के बारे में अब जानेंगे मेरे दोस्तों आज के लम्हे कार्यक्रम में चेतन के साथ। दोस्तों आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। प्रवासन एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग रहने और काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नौकरी, आश्रय या किसी अन्य कारण से लोगों का अपने घर से दूसरे शहर, राज्य या देश में जाना प्रवास कहलाता है। भारत में पिछले कुछ वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास बढ़ा है। प्रवास के कारण आजकल कई लोग बेहतर जीवन जीने लगे हैं। रोजगार के अवसर सबसे आम कारण है जिसके कारण लोग पलायन करते हैं। इसके अलावा अवसरों की कमी, बेहतर शिक्षा, बांधों का निर्माण, वैश्वीकरण, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखा, फैमन और ड्रॉट, और कभी कभी फसल की विफलता ने ग्रामीणों को शहर की ओर माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया। जो लोग काम या आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ज्यादातर बार प्रवासी लोग कुशल या शिक्षित नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें आमतौर पर मजदूर यानी श्रमिक, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए प्रत्येक दिन के अंत में भुगतान किया जाता है। ऐसे मजदूरों को अपने परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है और वे कई समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जैसे कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन, स्वच्छता, रहने के लिए उचित स्थान आदि नहीं है। शहरी जीवन के लिए प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है। बड़े शहरों के कई अवसर और आकर्षण बड़ी संख्या में लोगों को बड़े शहरों की ओर खींचते हैं। प्रवास का प्रवासियों के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हो सकता है। बेरोजगारी कम होती है और लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलते हैं। प्रवासन लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। इसे लोगों के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है क्योंकि वे नई संस्कृति, रीति रिवाज और भाषाओं के बारे में सीखते हैं, जो लोगों के बीच भाईचारा को बेहतर बनाने में मदद करता है। कुशल श्रमिकों के प्रवास से क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में वृद्धि होती है। बच्चों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है और जन्म दर घट जाती है। दोस्तों ये थे सकारात्मक प्रभाव, अब कुछ नकारात्मक प्रभाव को भी देखेंगे हम आज के लम्हे प्रोग्राम में। ग्रामीण क्षेत्रों से एक व्यक्ति की हानि, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादन और विकास के स्तर पर प्रभाव। शहरी क्षेत्र में श्रमिकों के
आने से नौकरी, मकान, स्कूल सुविधाएं आदि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। बड़ी जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। शहरी इलाकों में ग्रामीण के लिए जीवन रहना मुश्किल है, क्योंकि शहरी इलाकों में प्राकृतिक वातावरण और शुद्ध हवा नहीं है। इन्हें हर चीज के लिए भुगतान करना पड़ता है। प्रवासन से किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन होता है, इसीलिए भारत में जनसंख्या का वितरण असामान्य है। कई प्रवासी पूरी तरह से निरक्षर जीवन जीने में असमर्थ है। गरीबी में पले बड़े बच्चे को उचित पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं होती। प्रवास के कारण शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बढ़ गई है, जिससे अस्वच्छता, प्रदूषण आदि जैसे अनेक समस्याएं बढ़ गई है। कभी कभी प्रवासियों का शोषण किया जाता है। प्रवासन एकल परिवार की वृद्धि का एक मुख्य कारण है, जहां बच्चे व्यापक पारिवारिक दायरे के बिना बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था माइग्रेशन के बारे में आज के लंबे प्रोग्राम में। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने होस्ट, दोस्त और आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515। तक आप अपने होस्ट, दोस्त और आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारक फेरते। पर किते उना ने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।

0: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज ते।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज ते।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਰਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਮੁਕੁਲ ਗਿੱਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਬਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਰਜਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਸਾਰੰਗੀ ਵਾਦਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਟਾਰ ਵਾਦਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਂਸੁਰੀ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ 8:45 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 9:30 ਚਿੱਤ ਭਾਰਤੀ, 10 ਸੰਗੀਤ ਕਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया, कहा वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है, ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की, 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया, और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र

0: सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में

0: व्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है। वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक

0: अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 200

0: The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
2: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जादव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
3: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जिसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
2: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
3: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थानें हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमने रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अपन गए थे बेंगलोर में, चलिए हम आयुष मंत्रालय भी हमको, हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टैबलेट नहीं थी,

0: या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रहती कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
1: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कैलकटा में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
0: इस बार इसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमोट नहीं किया, लेकिन इस साल वहाँ की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहाँ पर चुन के दिए, और वो वहाँ के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहाँ पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था भरत मंडपम में, दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था जहाँ पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है, उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस बहुत अच्छी ढंग से वहाँ पर किया। सिर्फ वहाँ पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहाँ पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहाँ पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहाँ के कारपोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहाँ तो रोड पर करेंगे, लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहाँ पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाए करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी

0: ऐसे योग क्लब बनने लगे, लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते। देखो ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्या लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई, हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े वैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां है कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भाई CSR फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका कारपोरेशन नगर पंचायत है इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,40,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहां पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहां पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लिवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग तक। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर ईयर ट्रैवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया, तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है तो लोग भी अभी जगह जगह

0: यहाँ पे जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गांव में हमारे भी, तो वहां पर लोग फीस देके एक घंटा योगा सीखने जाते या करने जाते कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जाधव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight.
4: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
5: Silence,
6: lights,
5: sound,
6: camera,
5: action!

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। यह फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

0: अंतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को।
1: तोर जय जय कर तार, तोर जय जय।
0: कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

0: करो।
1: यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955।
2: झनक झनक पायल बाजे, झनक पायल।
1: सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये,
1: जो गाना बनेगा,
0: और दूसरा गाना था

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर
0: पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला।
1: जो तुम तो
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी

0: आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम

था शुक्राची चांदनी, लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: जिसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया, सावरे छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया,
0: बात एक रात की।

0: जिसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया, सांवरे छोड़ो छोड़ो मेरी बहिया,
0: बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: रह न सके, वो किसी को अपना बनाए क्यों।
1: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
2: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
3: फिर कोई
2: फिल्म

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates, Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुत रचना तीन ताल में है जिसके बोल हैं चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसके बोल हैं कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashvani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार

0: के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सौगात। जी हाँ, 11:10 हो चुके हैं, प्रोग्राम का समा हो गया है सौगात, जिसे तुसी सौगात गलों की सौगात थोड़े नाल रूबरू बैठण की, और सौगात प्रोग्राम दे विच खास करके जिहड़ियां चिट्ठियां तुसी बहुत प्यार नाल भेजदे हो, नंबर तुसी जानदे हो 9465567077 वट्सएप नंबर है, जिस दे विच तुसी लिख के अपने हत्थां दे नाल सजा के किहड़ा गाना कित्थों चल के साडे कोल पहुंचिया है, अपनी फरमाइश के नाल पहुँच सकते हो। तुहाड़ा इंतजार सानू बेसबरी दे नाल है, तो नंबर मिला के तुसी अपने दोस्त पारस तक पहुँच सकते हो। इंतजार तुहाडियां कॉल्स ते वट्सएप मैसेज का, प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, मिलते हैं इस गीत तो बाद।

0: लो जी, अगले कैंटी की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 12 बज चुके ने, 12 बजे तो लाइक 1 बजे तक सौगात प्रोग्राम इदा ही चलता रहना है। दोस्त नंबर मिला के साढ़े को आए ने, आओ गलबात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: हेलो,
0: क्या बात है बेटू जी, की हाल चाल है?
1: बहुत
0: चलो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार वास्ते। इदा ही तुसी आकाशवाणी जलंधर ना अपने दोस्त पारस ना इदा ही प्यार बनाए रखो। आज खास
1: बढ़िया।
0: सौगात की साडे लई लेके आए हो।
1: हाँ जी, गुरदास।

जी, इस प्रोग्राम में इतनी ख़त्म करने की दो इजाज़त। अगले शनिवार ठीक 11 बज के 10 मिनट से लैके मैं हाजिर हो जाऊंगा प्रोग्राम सौगात। तुसी जाना कितनी है सफर, इस साथ है प्यार थोड़ा, काश होने जनता नाल इतना ही बनिया रहना।

0: आहा, सच्ची सवेर हो गई। ए सिग्नेचर ट्यून रोजाना ही बड़ी चंगी लगती है। हाथ च दुध दा डोलू ते मोडे दे बैग विच एक छोटा जिहा ट्रांजिस्टर लैके हर रोज सवेरे निकल जांदा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। अज वीरवार शक समत 1938 दे वैसाख दी 8 तद अनुसार ईस्वी सन 2016 दी अप्रैल महीने की 28 तारीख इस वेले सवेर के 5:56 ते 47 सैकेंड हुए ने।
0: ओए, इंद्रेश दी

सॉरी पर शायद मेरे बोलन का तरीका गलत सी। सॉरी। लंबा कॉरिडोर, दोहां पासे दीवार ते लगियां नेम प्लेट्स, अनजाने अनपछाते ना, कोई भी नहीं जड़ा जड़ा हस के प्यार नाल कहंदा, कैसे हो जगमोहन पा, की हाल है थोड़ा जगमोहन सर।

नहीं नहीं नहीं इंज नहीं, ठीक तरीके नाल साफ साफ लिखना पवेगा। हाँ, स्वरन सुरफा हसी हसी सारे सुरफे ही तो हैं।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलां दा आनंद भी माण सकदे हो, ओ भी क्रिस्टल क्लियर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर। ए ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम हुण तुसी न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकदे हो। नाल ही तुसी दूरदर्शन दे वख-वख चैनल अते आकाशवाणी दे वख-वख भाषाई चैनलों का आनंद भी माण सकदे हो, ओह भी क्रिस्टल क्लीयर डिजिटल क्वालिटी च। न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते तुसी पंजाब दे केंद्रां विच AIR पंजाबी प्रेस करके आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकदे हो। सो हुणे डाउनलोड करो प्रसार भारती दी ऐप न्यूज ऑन एयर। ये ऐप प्ले स्टोर अते आईट्यून्स दोवें प्लेटफॉर्म्स ते उपलब्ध है।

तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। अंतर की बिद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले। सर्ब सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकुर अगह अतोले। ए प्रोसा उना जीव रूप स्त्रियां दा हुंदा है, जिन्हां दी प्रीत प्रभु नाल हुंदी है, ते उना नू प्रभु नाल प्रीत ही प्यारी लगदी है। उना दी अवस्था ता ए हुंदी है कि ओ परमात्मा दे नाम च मगन हो जांदियां ने, ते नैणा दे विच उस परमेश्वर दे दर्शना दी तांग रहिंदी है। प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवा वासा, नैनो तार तुहारी। सरवण करदियां भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवा वासा, नैनो तार तुहारी। इस शब्द गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु नाल प्रीत रखण वालियां दा मन उस अकाल पुरख दे चरणा नाल लग जांदा है, क्योंकि ओ परमेश्वर दयालु है, घट घट की जानण वाला है। उस दे चरणा विच चित लाया किसे प्रकार दी चिंता नेड़े ही नहीं आउंदी। मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

0: मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई। इस शब्द का गायन किया सिपाही अमरीक सिंह जख्मी ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सिवतार सिंह।
1: ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 795 उपर अंकित है। इस शब्द नूं बिलावल राग अंदर श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण किया गया है। गुरु साहिब परमात्मा की बेअंतता नूं बयान करदिआं फरमाउंदे हन कि इस संसार अंदर सारे जीवां की संभाल उह परमात्मा खुद कर रहा है। गुरु रामदास साहिब जी बख्शिश करदे हन कि इस लई हे संत जनों, वह परमात्मा का ध्यान धरिया करो। वह सारे दुखों का नाश करने वाला है, रिजक दाता है, जो सारे जीवों पैदा करके उन्होंने रिजक दे रहा है। गुरवाक है, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावहो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। विचार अधीन शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां जो शब्द का केंद्रीय भाव है इस प्रकार हैं। मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई रहाओ। गुरु साहिब बख्शिश करते हैं कि हे मेरी माँ, इस संसार विच मैनू यकीन हो गया है कि परमात्मा तो बिना कोई होर नहीं जो किसी दूजे का दुख दर्द समझ सकता होवे। इसलिए मेरा मन दया दे घर प्रभु दे चरणा विच विज गया है। हुण मैं परमात्मा तो बिना किसी होर दी आस नहीं रखता, क्योंकि तू सृष्टि का रचनहार है। जो तू करता है सो चंगा करता है, तेरा कोई शरीक नहीं। सृष्टि दे इस सारे प्रपंच का मूल तू आप ही है। तू दया करने वाला है, इसलिए सब जीव जंत तेनू सिमरदे हन, क्योंकि तू सारिआं नूं दुखां ते झोरिआं तो आप ही छडाउंदा है। गौड़ी राग अंदर गुरु रामदास जी फरमाते हैं, तू करता आप अभुल है भुलण विच नाहीं, तू करे सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही, तू करण कारण समर्थ है दूजा को नाहीं, तू साहिब अगम दयाल है सब तुद तिहाई, सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। इसलिए हे भाई, अजिहे परमात्मा का सदा नाम सिमरना चाहिए है। सदा प्यारे प्रभु को उस दे नाम की जाचना करनी चाहिए है। पावन वाक है, तुद बाज प्यारे केव रहा, सावड़ियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाहीं कोई जिस आगे प्यारे जाए कहाँ। विचार अधीन शब्द दियाँ आरंभ वालियाँ पंक्तियाँ अंदर गुरु साहिब फरमान करते हैं, मन मंदर तन वेस कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बसत है बहुड़ जन्म ना आवा। मेरा मन प्रभु दे रहन लई मंदर बन गया है। मेरा शरीर भाव हरेक ज्ञान इंद्रा मंदर दी यात्रा करने वाला साधु बन गया है। भाव मेरे ज्ञान इंद्रे बाहर भटकण दी थां अंदर वसदी परमात्मा वल परत पए हन। हुण मैं हिरदे रूपी तीर्थ उत्ते ही इशनान करदा हाँ। हुण परमात्मा दी सिफत सलाह दा शब्द मेरी जिंद विच टिक गया है। इस वास्ते मैनू यकीन हो गया है कि मैं मुड़ जन्म विच नहीं आवांगा। इसे शब्द की प्रोड़ता

ओ प्रीत चरण संग लागी, कूट जाप ताप सुख पाए, आए मिले पूरन बड़पागी। इस शब्द का गायन कीता सी पाई चन्नण सिंह मजबूर ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

उत्तम पद पाया गुर अर्जुन कर गुर रामदास भगत उत्तर आया बड भागी उन मानिया रिद शब्द।

गुर अर्जुन कल उचरै तै राज जोग रस जान्यो भै निरपो माण्यो लाख में अलख लखायो अगम गोचर गत गंभीर सत गुर परचायो गुर परचै परवान राज में जोग कमायो धन धन गुर धन अपार।

0: अटल सिख संगत सब नावै, नित पुराण बाचिया वेद ब्रह्मा मुख गावै, अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो, गुर अर्जन सिर छतर आप परमेसर दियो, मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो, हर बंस जगत जस संचरियो, सो कवन कहै श्री गुर मोयो।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो।

अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामदी नूर अरसोह कुरसोह झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सोही है

रहाउ रख रख चरण धरे विचारी दुविधा छोड़ भये निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडल

अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुविधा खोवे आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे कहताओ पढ़ताओ सुनताओ एक धीरज धर्म धरणी धर टेक जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कौ जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागे गुर कै शब्द